0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज के स्मृति दिवस पर एक एक बच्चे को स्मृति चाहिए। इस स्मृति दिवस पर आज अपने में कोई न कोई विशेषता ध्यान में रख और अपने में धारण करे विशेषता दिन में विशेषता धारण। जो भी अपने में कमी समझते हो उस कमी को आज के दिन समाप्त कर कोई न कोई उमंग उत्साह की धारणा का संकल्प करना। सोने के पहले ये संकल्प करके सोना और अमृत वेले उसी को दोहरा कर हमेशा के लिए अटेंशन दे पाप समान बन जाना है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज चारों ओर की सर्वश्रेष्ठ See.

0: sua mano. O sonno scemi.
1: Sí.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर कोई गलती से आपके पास बुरा संकल्प आ जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आएगा तो सही, क्योंकि आपने बहुत समय बुराई को पाल के रखा है। तो देखो, पशु भी होते हैं ना, अगर पालते हैं ना तो उसको दूर भी फेंक के आते हैं फिर भी आ जाते हैं, आते हैं ना। तो मानो आपने हाथ तो उठाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन गलती से कोई कमजोरी आ जाए तो क्या करेंगे? कमजोरी लाने देंगे? देखो, इसके भी विधि बताते। अगर आपके पास आपने वायदा तो किया ना, तो दे दिया ना बुराई, बुराई बाप को दे दी ना, अच्छा कोई को कोई चीज दे देती है, और फिर अगर गलती से आपके पास आ जाती है तो आप क्या करेंगे? रखेंगे, रखेंगे अपने पास कि वापस करेंगे, वापस करेंगे ना। तो अगर आपके पास थोड़ी क्रोध की रेखा, लोभ की, मोह की, अपमान की गलती से आ भी जावे, क्योंकि बहुत समय लगा है, तो वापस कर देना, बाबा मेरा बाबा अपनी चीज आप संभालो, मेरी नहीं। तो सागर है ना, सागर में समा जाकर आप नहीं, यूज नहीं करना, क्योंकि अमानत हो गई ना, तो अमानत में ख्यानत नहीं की जाती। बाप को दे दो, बाप आप जानो, ये जान मैं नहीं यूज करूंगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हो मिट्टी नहीं खाना, सिखाते हो ना, और बच्चा फिर मिट्टी खा लेता है ना, उसको मिट्टी अच्छी लगती है। फिर आप क्या करते हो? बार बार उसके हाथ को चुराते हो या खाने देते हो, चुराते हो ना। तो ये अपने मन को चुराना, मन में ही तो आएगा ना। तो अपने मन का मालिक बन के इस चीज को छोड़ना, ठीक है? विधि करेंगे ना, सहज हो जाएंगे। हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम बाप के मदद का है। अनुभव करके देखना, हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समय बदल सकते हैं। जाओ सेवा करने, लेकिन कर भी नहीं पाओ ऐसा समय भी आने वाले, इसलिए जो करना है वो अब करो, कब नहीं। क्योंकि समय पांचों

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हाथ बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा खुश हो जाता। कमाल है हाथ उठाने की, खुश करना तो आता है बच्चों को, ये तो क्योंकि बाप दादा देख।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सत्युग में या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Oi, coisa.

Reddy. Kasvaropa. Kitna mane. Sabhi pahunch gaye Satyug mein.

0: सारे चक्कर में इतने श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: नहीं समझती है कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, सेवा ज्यादा चाहिए।

शामिल क्या करते हैं जब फीलिंग आती है ना, तो क्या होता है? या कांधा चुभेगा या रोज करके बैठ

स्वरूप हो। सच्ची सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होता है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा अखबार में, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। कई साधन ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मण की बहुत आगे रखेंगे पूछेंगे। ये सब भाव स्वार्थी सेवा जो सच्चा सेवादारी है। आजकल के हिसाब से शिविरों की स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन इस समय सेवा आपके पास आएगी, आप सेवा के बिचारे नहीं, आपके पास सेवा

अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवक। आपका चेहरा ऐसी

धर्म राज का खाता को

suave.

0: उसको देते हो तो भी आपका शेयर उसमें जमा है, चाहे आपने नहीं किया लेकिन दिया किसको चांस, तो उसमें भी आपका शेयर जमा होगा, क्योंकि सच्चा डायमंड बनाना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे लंबे नहीं चलो, ठीक है हो गया दिन बहुत सोचो, हमेशा किताब कच्चोपरा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाए।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जितना प्यार है ना उतना साथ में, प्यार भी चाहिए शक्ति भी चाहिए, अभी शक्ति को बढ़ाओ।

0: pipi, coipi, bene. अपने को सर्वशक्ति नहीं शिव शक्ति समझो। शिव शक्ति पाप साथ है। पांडवों से पांडव पति साथ है। तो अभी क्या करेंगे? जो बाप दादा ने कहा है, पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द लगाओ, वायुमंडल बनाओ, एक दो किस सहयोगी बन, हर एक अपने अपने स्थान पर रहते हैं, स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ, तो क्या करेंगे? अभी नवीनता करेंगे ना, जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना। हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो, संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, अमृत वेले बाप दादा देखते हैं कि संकल्प अच्छे करते हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन जब कर्म योगी बनते हो संबंध संपर्क में आते हो उसमें फर्क हो जाता। कर्म योगी की स्थिति उसमें अटेंशन ज्यादा जाए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

उसको चेक करो,

koi na koi. Oh, God.

be आगे चलकर के जो समय आने वाला है

संकल्प सामने लाना, और रोज़ हम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: See.

0: cosa, Teo. Easy practice. So you have me.
1: Estética.

मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी है तो अभी ये प्रैक्टिस करो। See?

मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में हूं। इस मास्टर शक्तिमान

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। Shut up.

však ti otvára. Sa každou. Jesus.

ரெய்சிஸ் உங்கள் பரிவர்த்தனை.

So.

させばこ。Suck.

Ощерта. Сакаштенеки. Сяде. И сива ме манако. Sightseeing.

0: साइट सीन देखने के लिए साकी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस। साइट सीन मनोरंजन हो जाए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी संबंध संपर्क में आए उन आत्माओं की विशेष संपर्क में आए चाहे संबंध

0: sad connection. ऐसा मजबूत करो जो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े लोगों माया से बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े मन का लगन ऐसी पक्की करो जो फिगर नहीं सके जहां बाप से लगन है वहां फिगर नहीं आ सकता असंभव है इसलिए संदेश देने की सेवा करो लेकिन जो सेवा का फल निकला है उस फल को मजबूत बनाओ पक्का बनाओ कच्चा फल नहीं रह जाए क्योंकि समय फास्ट जा रहा है समय का कोई भरोसा नहीं कब भी क्या भी हो सकता है और अचानक होना है बाप दादा को पता भी है कब होना है लेकिन बताएंगे नहीं क्योंकि अचानक
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहां है आनंद ही आनंद।

Oh, strong.

世界，我杰米，阿拉贝里曼梅波达的，一朵丹叶，一朵真丹叶，真里朵萨米真的，巴特达光西亚的。Oh, man.

0: tutto ad enciantina. Cittne porati o tiena. Tu dica che porano mi.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

buddy.

Повощи.

No.

But

सब रुके, आप सब

Tamam.

0: Främlingarna. Till mig. Du ska ge. Vila. Med sustain och dig.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा बाप ने हर बच्चे प्रेत चाहे कमजोर के ऊपर

Radio.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

अच्छा,

0: और परिवार को देख तो लिया। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहिए कि अगर दिल से जाओ तो लास्ट सो फास्ट फास्ट सो आगे आ सकते। सब आत्माओं का प्यार सहयोगी बनेंगे, स्नेह देंगे और आपको आगे बनाएंगे, चांस देंगे। इसलिए आज आने वालों परिवार जहाँ भी आए हो, जहाँ से भी आए हो, तो वो परिवार आपका सहयोगी बनेगा, आपसे सहयोगी बनेगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

0: और विश्व
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: खुशी नहीं कर
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

见。

你家。

خوش.

0: जैसे आज हर एक के सूरत में खजाने से भरपूरता की झलक है,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब भी बाप को टाइम मिलता है तो क्या दिल में होता है, मेरे बच्चे लाडले बच्चे, अब बच्चों को टाइम मिलता तो मेरा बाबा ऐसे है ना, ऐसे है, हाथ उठाओ। अच्छा, बोलने की चीज ही नहीं है, कितना भी बोलने की कोशिश करो लेकिन बोलते हुए बोल नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए।
3: छोटे बनाना सी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं है। सुनाया एक एक संकल्प का इक्कीस जन्म का कनेक्शन, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा मन को बिजी रखो, चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो। अपना चार्ट बताओ, हर समय बीच बीच में जो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई है, बिन बिन जानते हो न ड्रिल अशरीरी बनने की, अपने तीन स्वरूप व्यक्ति की ड्रिल जानते हो ना, जैसे बाप के तीन रूप है ऐसे आपके भी तीन रूप है, ब्रह्मा फरिश्ता और देवता। इन तीन रूपों में ड्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रखो, इसलिए महामंत्र क्या है, मन मना भव।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सक्सेसफुल कभी भी क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो ना, कहते हो के मानते भी हो, सिर्फ कहते हो या मानते हो? क्या मानते हैं? तो क्यों नहीं सफलता होती? कारण क्या? जब अपना जन्म सिद्ध अधिकार है ना, अधिकार है शक्तियां पीछे वाली सुनाओ, अधिकार है पक्का है, तो अधिकार प्राप्त होने में अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने देखा है मेजर रट्टी अपन ने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं, तुझे अपना ही कमजोर पर्सन जितने लेकिन पर्सन बना देते होगा नहीं होगा क्या होगा पता नहीं, ये संकल्प दीवार बन जाते और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाते। निश्चय होते विजय आपका स्लोगन है, दस बार शुरू का है, पक्का है, पक्का सभी का। जब ये अभी का स्लोगन है, भविष्य का वर्तमान तो सदा क्या रहना चाहिए? पर्सन चित या पर्सन चित, तो माया अपने कमजोर संकल्प चार बिछा लेती और अपने जाल में फंस जाते। विजय ही है इससे इस सच कमजोर चाल को समाप्त करो। फंसो लेकिन समाप्त करो। शक्ति है समाप्त करने की। धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जान को पारने ने दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट। ये बर्थ राइट परमात्म बर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित सहज और सुधै रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Red।

जाकर काम काज करते भी याद किसकी है, कॉपी किसको करते हैं, साकार में क्या दिखाई देता है बाप के दिल में मैं, अब मेरे दिल में बाप। ऐसे है ना, हाथ उठाओ, ऐसे पक्का है। वैसे कहते काम काज करते भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सान नहीं होता है, तो आपका भी परिवार ना। तो बहुत बढ़ रहा है तुमको अशांति, तो आप रहम दिल बनो, साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो, जैसे ये संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए, सदा के लिए लिए है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दादा के बच्चे बन मास्टर दादा स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। सारे दिन में उसमें मनसा

सभी को मुक्ति में भेज। आप पाप के वरदान से

e fares quality. Bun sakte jitne fares quality wale to char sthan aur bhi hai, uski baat nahi karte, lekin Karnataka ke dharne se faris bahut nikal sakte. Taali nahi sirf bajana, nikal ke dikhana hai. Achhe achhe hai, baap dada ki nazar padti hai, लेकिन टीचर्स की नजर नहीं पड़ी है। सुना पांडव, सुना पांडव, बहुत निकल सकते बाप दादा को कोने कोने में याद आते सारा यज्ञ चला सकते क्या समझा? अभी निकालना और बहुत सहज निकल सकते, सिर्फ अटेंशन नहीं दिया, जनरल सेवा में लग गए, पर्सनल सेवा।

सेवा का चमत्कार वारस निकाल सुंदर पालना चाहिए। उठाओ पान का बीरा उठाओ, दादी को कहो हम सहयोगी बनेंगे, बनाएंगे और बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे। आज देखेंगे, 6 मास में देखेंगे। पहले आप निकालो, दादियां आएंगी, कुछ वारस तैयार करो, फिर दादियों को बुलाओ, आएंगी। जो प्लान बनाने चाहो वो बनाओ, लेकिन वारस निकल सको जाना। टीचर्स वारिस क्वालिटी कैसे निकाली जाती है ये क्लास कराना।

0: क्या समझते हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा 6 मास देखेंगे, 6 मास का टाइम दे रहे हैं। देखो कहाँ से बाइक ज्यादा निकल सकते हैं, कहाँ से बारिश ज्यादा निकल सकते हैं। हाँ हो नहीं है, जब समय समाप्त होगा तो सब निकलेंगे ना, निकलेंगे जरूर। सुना सिर्फ कांध नहीं हिलाना करके देखा ना, कर्नाटक वाले कांध बहुत अच्छा हिलाते, ऐसे ऐसे करते अच्छा कर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समझते देखा बाप ने, समझ बहुत अच्छी। लेकिन समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी करते हैं। लेकिन चलते चलते कोई बातें

ऐसे बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे लक्ष्य

समय अब

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ, सारे दिन में दो शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो, वो दो शब्द है मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने बड़ी चेत दे दिया है कि मैं आत्मा हूं। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो ये याद करो कि मैं साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमात्म पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूं। और जब मेरा शब्द बोलते हो मेरा कौन, मेरा पापा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय ये एडिशन करो, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बेफिक्र मत चल,
2: बेफिक्र
1: फिक्र का है था। आप बैठो।
3: कारण क्या है बेफिक्र क्यों है?
2: कल क्या है ये फिक्र क्यों है?
3: दिल बड़ी है,
2: दिल बड़ी है।
4: बेफिक्र क्यों है? क्योंकि दिल बड़ी है।
3: जहाँ दिल बड़ी होती है ना, तो जो होना है वो हो जाता है, जो आना है वो आ जाता
1: है। तो दिल बड़ी कैसे हुई है?
5: बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा परिवार का विशेष कार्य धुआ देना, धुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करते हैं, अभी धुआ लेगा कैसे? धुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा।

0: Carvaș, o pot toate de ap toate necedeu, lecăn o pot toate de lecăn pot toate le nevala con le nevale apoi apoi pote nevale आपले ने वाले तो उसकी बददुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रह माएगा स्वयं भी सेफ रहो, बददुआ लो नहीं, लेने वाले आप न दो न लो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ऐसा एक दो को सहयोगी बनाओ जो सभी मास्टर्स
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: लिए आवाज सुनाई नहीं देता, लेकिन पापा को सभी का आवाज पहुंच रहा है। बाप दादा भी रेस्पान में कह रही है, वाह बच्चे वाह, हर एक के दिल में कौन सभी क्या कह रहे मेरा बाबा, ये गीत तो सुना है ना बाप बच्चों का। बाप कहते हैं मेरा बच्चा, हर बच्चा कहती है मेरा बाबा, कितना मीठा आवाज। बस मेरा जो कह रहे हैं ना, उसकी कमाल, हर एक की दिल कह रही है मेरा बाबा। बाप की दिल हर एक बच्चे प्रेरित कह रही है मेरा बच्चा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कैसे यूज करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता। और दूसरी बात क्या होती है, चलो बात मानो आप में सहन शक्ति कम है। ऐसी बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, ऐसे भी नहीं, तो माया भी ऐसे उससे रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं कि ये बात तो पहली वाली तो वो थी ना, ये तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीच वही होता है। सब रूप परिवर्तित होते हैं, उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि
2: बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है।
1: इसीलिए मानता था। उस नजर से आपको नहीं देखी, लेकिन सच्ची दिल और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन के लिए लाइन में डिस्टर्बर नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। जो बाप दादा एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देने चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देने चाहते हैं, फॉर्म मिल नहीं सके, लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कटाव है, तो ये जो प्राप्ति होनी चाहिए ना, बच्चे कहते हैं, कहते नहीं है तो सोचते हैं, कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता, ब्राह्मणों का भी मिलता, बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता, हमको कब मिलता है? कारण क्या? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेने चाहिए बाप दाता के भंडारी में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है, बाबा का जियाजर, बाबा का लो दाता है, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? लेकिन ये दो बातें सच्ची दिल साफ दिल चतुराई नहीं करो, चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई भी करते, साफ दिल सच्ची दिल और बुद्धि की लाइन सदा जी करो क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टर्बेंस क्लियर नहीं करने दे, ये जरूर करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो भी निमित्त बने हुए हैं उन्हों को आजकल के वायुमंडल पर स्वयं तो संतुष्ट रह नहीं है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं। आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवश होके कर लेते हैं। कुछ सिक्किया, कुछ किमिया, कुछ रैम, कुछ आत्मक सने उसकी आवश्यकता है। वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता, बैलेंस से

0: इसलिए सिक्किया के साथ हिम्मत और स्नेह दिल का बाहर का नहीं, लेकिन दिल का स्नेह दोनों का बैलेंस रख करके देना। और ऐसे प्लान बनाओ जो चारों ओर कोई ना कोई ऐसा प्लान चलता रहे, जैसे समय पर समय पट्टियाँ चलाते हैं ना, वो तो चलाते ही हूँ, लेकिन छोटा मोटा प्रोग्राम ऐसे विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बन। चाहे ना है लेकिन हिम्मत कम है, तो आपस में मिलके कोई ना कोई और मास के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी बिजी हो जाए, उसमें रिजल्ट आती रहे। और चीकिंग भी हो, अगर नहीं करते हैं तो क्यों, तो उनके ऊपर सने से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समय पारा कोई ना कोई वर्क इंटरेस्ट का निकाल के सबको बिजी रखो उसमें। ठीक है,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हाथ इसीलिए उठाते हैं, अभी जैसे एक तो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना। ऐसे जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हासिल हो जाएगा, समस्या खत्म। समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाए। मास्टर सर्वशक्तिवान अपना टाइटल हर समय याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो मास्टर सर्वशक्ति क्या नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। आर्डर करो, हर शक्ति को समय पर आर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, है भी, लेकिन सिर्फ कमी ये हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करने आते। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। जैसे इस कर्म इंद्रियों को आर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पांव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को आर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। आके रखते हो, कार्य में कम लगाते हो।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्रह्मांड परिवार सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी ने ध्यान से

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प, सारे दिन में बीच बीच में चलता है वेस्ट। Esto

Fatma.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस समय आप हरि का आत्माओं के प्रति रहम दिल और दातापन कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने के वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने संबंध संपर्क से तो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो, चल

0: अपने भाषा में चिल्ला रही है, शांति तो सुने दो, दिल का प्यार दो, से ऊंचे हो जाओ, हद की बातों में हद के संस्कार
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मेहनत से चुरा देता है, जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। सदैव सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। सदैव और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते बस अब थोड़ी सी है। जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे सने में समाया डुबकी लगाई निकल समाते रहो। Yo.

0: Sapa! Sani ki shakti me rao. To sada ke liye mehnat se mukt ho jayenge. वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मौत उसका साधन है. सने में समाया हुआ रहे, शनि का अनुभव सभी को है ना कि नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप से बाप दादा सबसे ज्यादा किसका है, किसका है, सभी हाथ उठाएंगे मेरा है, ऐसे ना है ना? है, पीछे वालों का भी है हाथ उठा रहे. हाँ, साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं है सबका. तो बाप दादा आज की कहती है शनि की शक्ति सदा कार्य में लगाओ. योग लगाते हो ते भूल जाए, देखी दुनिया भूल जाए, माया जीत बने. जब सने की छत्र छाया में रहेंगे, सने की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती. सने के साखट से बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है और अपना बना देती है. निकलो ही नहीं, समाए रहो. सने ही कोई भी कार्य करते हुए सने को नहीं भूल सकता. सने में खोया हुआ हर कार्य करता, जैसे आज के दिन कोई नहीं ऐसे सदा सने में नहीं रह सकते हो क्या? अपने समान सहज बना देगा, क्यों जिसके साथ सने है उस जैसा बनना, ये मुश्किल नहीं होता है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, ये होमवर्क देते चेता, कि ये तो मास एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय के बचत का अपने प्रत विधि बनावे। इन दो मास में हर एक अपना चार्ट रखे, व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया, क्योंकि अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए सदा मन के ऊपर टेंशन रखना जरूरी का हुआ भी है। मन जीत जगत जीत, तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को संपन्न करना है। कर सकते हैं, करेंगे, वो हाथ उठाओ। बाप दादा इनाम देंगे। अपने रिजल्ट आप देखना। मन खुश बांटेंगे। ये पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का अटेंशन रखो। व्यर्थ समाप्त संकल्प समय दोनों समाप्त और समरथ संकल्प समरथ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Baby.

Apa?

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अच्छा, अभी सभी एक सेकंड में एक सेकंड एक मिनट नहीं Fresh.

जैसे शरीर अक्टल शरीर को शक्तिशाली बनाती वैसे ये

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: यज्ञ में हरेक का पाठ अपना अपना आवश्यक है। कोई भी एक्टर निमित्त सेवादारी अगर मिस होता है तो ऐसे नहीं मालूम नहीं पड़ता है। हरेक का पाठ अपना अपना महत्व का, कोई का भी पाठ अगर मिस हो जाता है तो फर्क पड़ता है। ये बाप का वरदान एक एक कामन पाठधारी को भी जैसे बनाने वाले वाला नहीं हो तो काम नहीं चले। सफाई वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले। और क्लास कराने वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले। हर एक एक्टर को ड्रामा अनुसार जो पार्ट मिला हुआ है उसको समझना चाहिए कि मैं भी विशेष निमित्त हूं। ड्रामा ने हर एक को चाहे छोटा सा कार्य लेकिन वो भी जरूरी है। पांच अंगुलियां है, एक अंगुली भी मिस हो जाए तो फर्क पड़ेगा। तो यज्ञ की यही विशेषता है, जो भी जिसको पाठ मिला है ना वो बहुत बहुत बहुत जरूरी है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञास हो, कोर्स वाले आवे या नहीं, स्वयं से संतुष्ट रहो, निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही। प्रोग्राम भी किया लेकिन आया कोई नहीं, स्टूडेंट्स नहीं पढ़े, कोई अड़चन नहीं, आपने तो किया ना, आपके हिसाब किताब में जमाओ और उनको भी संदेश मिल गया तो टाइम सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ उसको नहीं सोचो, स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। घबराओ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कई बच्चे ऐसे होते कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था तभी ये हुआ, किसे योग था और कोई है क्या जिसे योग है और सदा रहेगा। बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है, तो अगर कोई आया नहीं तो सीजन का फल है, सीजन आएंगे, दिल शिकस्त नहीं हो, क्योंकि श्रीमत को तो मानना है, श्रीमत परमान कार्य किया, इसीलिए श्रीमत को मानना ये भी एक सफलता है। पढ़ते जाओ, करते जाओ और ये पश्चाताप करके आपके पाँव पर पड़ी जो आपने कहा हमने नहीं माना, यही आप दिव्या बनेंगे, आपके पांव पर पड़ेंगे, तभी तो भक्ति में भी पांव पड़ेंगे, तो वो टाइम भी आना है जो सब आपके पांव पड़ेंगे कि आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की ना, तो विघ्न कितने आए और आपको कुछ हुआ तो पाप दादा चतुर छाया बनाता, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी दुनिया मुखी देता है, गुरु लोग सब एंटी हो गए। एक ब्रह्मा कुमार अटल रहे तो प्रैक्टिकल में बेकारी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय बिना बिना विघ्न भी देखे, बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया, लेकिन चतुर छाया रही ना, कोई नुकसान हुआ दुनिया वाले हंगामे में डर करके सब छोड़ करके भाग गए। जब पाकिस्तान हुआ तो क्या हुआ, सब भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट भर गया, समाज भर गया, सभी डर के मारे जो अच्छी चीज लगती थी ना वो छोड़े कैसे, प्यार होता है ना उसे, तो जो सिंधी लोग एंटी थे आपने जो उस समय एंटी थे वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया, जो बढ़िया बढ़िया चीज थी ना वो हाथ जोड़ करके देखे गए, तो आप यूज करो। और दुनिया वालों को हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सारा बैल गाड़ी सब्जियों की थी, 5 रुपए में सब्जियां, कितने मजे से सब्जियां खाते थे। तो दुनिया वाले डरते थे

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

hagan sin que yo del sin papá que tenía un co satán se Cushy.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक मत होना अर्थात सफलता, सफलता आप बच्चों का हरेक का जन्म सिद्ध उसको यूज करो। अल्लाह पहले नहीं बन हो जाएगा, कर लेंगे ये नहीं सोचो, करना ही है, ये है ब्राह्मणों की बात।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो, टाइम पर सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना। एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब आप

Sede só.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: मैं तेरा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Awesome.

कार्य करने। एक तो अपने सेवा स्थान, कोसा

एक बच्चा अपनी कमजोरी को तो जानते ही है, जो विशेष कमजोरी हो आप तो जानते हो ना अपने कमजोरी। वो कमजोरी

जैसे हाथ उठाने में एवं

Pasar.

0: शुभ भावना से टोकने के रूप से नहीं पूछना। शुभ भावना से एक दो की सहयोगी बन, एक दो को आगे बढ़ाने की शुभ भावना से इशारा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी बहुत टाइम हो गया है, कोई नया कार्य की इन्वेंशन नहीं निकाली। वर्गीकरण का भी कार्य अभी काफी टाइम चल चुका, कॉन्फ्रेंस भी चल चुकी, युद्ध यात्राएं भी चल गई। अभी कोई नई सेवा की विधि निकालो, सोचो, जिसे आवाज सहज फैल जाए। अभी तक जो भी किए सेवा के प्लान, बाप दादा को पसंद है और वृद्धि भी हुई है, लेकिन बहुत समय चल चुके ये प्रोग्राम्स। अभी कोई नई इन्वेंशन तैयार करो, कोई भी करे, छोटे करे तो इन्हें एडवांस मुबारक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं, कि अभी फिर भी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, ऐसे बच्चे भी देख रही है, अच्छा पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन दीवार पुरुषार्थ की

0: Kusyarat, hin ke wayu mandal me. Nayakar, odokopi, omagut samilo. शरत में थकावट अनबन होती है, बाप दादा देखते हैं, लेकिन स्वयं शरत पे तीवर रहने वाले औरों को भी शरत पे आगे बढ़ाओ, जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह से पढ़ते भी चले, पढ़ाते भी चले, क्योंकि एक दो के सबके प्रत शुभ भावना के आधार से बढ़ाते चलो, उमंग उल्लास अपने अनुभव का सुनाते हुए एक दो के सहयोग।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को खुशी है कि हर बच्चा चाहे सिंधी है चाहे हिंदी है, लेकिन हर बच्चा खुश रहता है मेजॉरिटी, ये देख के बाबा बहुत खुश होता। खुशी कभी नहीं कमाना, बात होती है लेकिन बात हमारी खुशी क्यों ले जाए। खुशी हर एक की अपनी चीज है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। बातें आती है, वो भी पेपर आता है, तो जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी है वो पेपर में सदा पास होते, उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। ही रेडी
2: ठीक है तो।
1: ऐसे रेडी रहने वाले की निशानी ये है कि उनके शिकिल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती। कितनी भी बातें हो जाए, क्योंकि डबल संबंध में रहते हैं, लौकिक में भी है अलौकिक में भी, लेकिन जो सदा खुश रहते हैं वो आगे से आगे कदम बढ़ाता रहते, और बाप उन बच्चों को देख सूखम में उनके ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, जो उनको भी महसूस होता है बाबा का प्यार मेरे से। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत है और सदा ही खुश रहेंगे, जो नहीं भी है तो भी सदा खुश रहेंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे आत्मा को सहयोग भी दे सकते।

हिसाब किताब मेरा। तू सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस की शक्ति की सकाश दिया और वो अनुभव

साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में कुछ

0: इशारत कर रही है। क्षमा का पुरुषार्थ आप ही कर सकते हो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी पत्थर में जाना न जाना अनुभव नहीं रहो, जाना है आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा।
2: बहुत लोग का निमंत्रण होता है पीछे तो सब कहेंगे
1: नहीं, उसमें भी जब देखो हो सकता है तो ना नहीं करो, चल सकता है शरीर, कभी तो एकदम खराब होता है ना वो बात दूसरी, बाकी चल सकता है तो सेवा से खुशी होती, ये भी दवाई है। कितने खुश होते हैं तो सबकी खुशी की खुराक मिलती।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहती है ना, तो उस समय पर शक्ति नहीं आती। वैसी शक्ति है लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना तो भी नहीं आती। है मास्टर सर्वशक्ति टाइटल क्या है आपका? मास्टर सर्वशक्तिवान। और कहते क्या है, शक्ति समय पर नहीं आती। कारण अपन ने मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर से अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो अथॉरिटी करने वाले को होगी वो ऑर्डर करेगा तो मानते हैं ना। ऐसे दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सर्वज, उस सीट पर सीट नहीं होते तो आह्वान करते भी शक्ति समय पर नहीं आती। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है अपने बिजी रखो, कभी किस शक्ति को सारे दिन में इमर्ज रखो, कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे अपने सीट पर सेट रहेंगे तो शक्ति आपके आगे सदा जी हाजिर होगी। आपकी शक्ति है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कम से कम बाप दादा फिर भी मार्जिन देते कि इन 6 मास में जो बाप दादा ने से कम छे मास में अपने को जीवन मुक्त स्थिति के साधन के बदमाशी करेंगे क्या? करेंगे? नहीं करेंगे ना। और ठीक कला की बासी करना और कोई बासी नहीं, कृति कला की बासी, बहाने बासी, कमजोरी की बासी, ये सब समाप्त।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: धरनी पर बैठना ये तपस्या

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: 100 इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है। तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी आवश्यकता जहाँ है वो मेरा है, चाहे सोन नाम अलग अलग है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और चार चांद लगाओ। ये बाप दादा को अचल, तो इस संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे ना, हाथ उठाओ, पढ़ाएंगे ना, सभी ने उठाया, हम सब एक है। ये तो सेवा के कारण कोई देख रेख हो सके, इसके कारण सोन बना है। बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक ही रहेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा देख रहे हैं आपके अनेक भाई बहने अपने जीवन से
4: It's

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: योग में अमृत वेले बैठते मेजॉरिटी ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग अशांति हलचल बढ़ती है। इसलिए अपने इस समय की टॉपिक रखी है, एक परिवार। उसके परमान जब एक परिवार

0: अटेंशन खिंचवा रही है। कि अभी ज्वालामुखी योग की आवश्यक
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

So

ऐसे शब्द बदल, ऐसे हो जाएगा। कैसे करूं, क्या करूं, नहीं

चाहिए।

ese motivo, Alex.

Ještě boty. Ještě

Tsunami.

people know.

अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रोड़ियां सुनते हैं, रोड़ियां बहुत हिम्मत की करते हो। Shit.

is at the God saying, I'm sorry.

7. Hey. Sim.

0: Σάρακο, τι ωραίο.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

So

месте, сэр Ури. Кио, окажусь в своем месте.

Samantha, dear. Swaraj.

Maybe.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी, अगर नाम निकालो तो बहुत है। वतन में आज
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yes.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Percentage yoga keys.

0: salter. जीवन में परवाह इसलिए चमक का खाता कोई कोई समय का जमा होता है लेकिन
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Sorry.

0: जो भी अपने को महारथी समझते हैं उनको भी ये सेवा करनी। सभी अपने को महारथी समझते हो। अच्छा
1: कोई गीत है जैसे बनते हुए मिल जाए पर्वत की छाया ये राम
0: आप द्वारा ऐसा अनुभव जो गीत गाया पढ़ता जाएगा।
1: ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाचा का अर्थ, इसका भी अर्थ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वो है संगम युग के समय का खजाना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, हुआ कुछ हुआ, फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी तो आपको क्या, आपको नुकसान है भैया, क्या होगा उसका भैया होता है, अच्छा ही होगा आपके लिए, अच्छा होगा दुनिया के लिए, कुछ भी हो जाए भी बेहद

Usa.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: नहीं बच सके।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो अंतर मिटाने के लिए

起来，满山大人，石雕家，丹瓦石雕图，法家大人。

morning.

नहीं आता।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे, धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

ใจอัจฉะใจพุทธสัพ

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ನೋಟ್ಗಳನ್ನ

get you.

che se bio shit guys up shit legen mat

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो सेवा तो की लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं साथी और वायुमंडल जन सपे संतुष्टता के वाइब्रेशन में सेवा की सफलता की तीन बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल वाणी। भाव भावना और स्वभाव ये सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट और जिनों की सेवा की वो भी आगे बढ़ते जाए। निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के नजदीक इतने नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो ये चीज

0: चाय कहाँ पे सेवा के लिए जाते हो तो ये चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल कितने प्रोग्राम हो रहे हैं,

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी बाप दादा के वरदानों को अपार बनाने के लिए सहज विधि ये अपनाओ के अमृत वेले और साथ में कर्म योगी बनने के समय भी बार बार वरदान को रिवाइज कर स्वरूप में स्थित है या नहीं है तो अपने को वरदान के स्वरूप में स्थित करो, बार बार रिवाइज करो। बाप दादा तो दे देते हैं वरदान, लेकिन वरदान को कायम रखने के लिए बार बार रिवाइज करके स्वरूप में लाओ, अनुभव करो उस वरदान का, रूहानी नशे का अनुभव करो, तो वो वरदान आपका अमर वरदान हो जाए। क्योंकि वरदान के विशेष आत्माएं भक्तों को भी वरदान मिलता है, लेकिन वो अल्प काल का एक जन्म के लिए। आपका संगम का वरदान जन्म जन्मांतर साथ रहता है, इसलिए वरदान स्वरूप में लाते रहेंगे तो वरदान की सफलता का अनुभव करते रहेंगे। बुद्धि में नहीं, सिर्फ स्वरूप में लाओ। उस नशे में रहो,
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा मुस्कुराती रहती है तो बचता है और लाइट शुरू हो जाती है। बाप दादा समझती है कि बच्चे कड़ी कड़ी तक पी जाते हैं, लेकिन बाप दादा प्यार का सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं, टांगों में मसाज हो जाते। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा। बाप से मिलन का सदा आगे बढ़ाते, लेकिन बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलते है। बाप एक और बच्चे अनेक, अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिक्की लदे हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार आने नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है क्योंकि पेपर तो होना है ना, तो क्या करेंगे अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाप दादा को दे देना। देना आता है ना, लेना तो आता है, लेकिन देना भी आता है ना। छोटे बन जाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं, मम्मी ये आप संभालो। ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो, फिर अगर आवे आएगी। बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से भी फिर आती भी है, लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या। देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आई, आपने तो दे दी ना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन जैसे साइंस से आपकी रूहानी शुभ भावना शुभ कामना की वृद्धि दृष्टि और सृष्टि को बदल जैसे मधुबन में अनुभव किए ब्रह्मा बाप के कर्म भूमि योग भूमि चरित्र भूमि अपने मन की वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक बात सुन, बाप दादा ने चारटी में देखी, सामने

este.

Baby.

sempre me teria que roubar. Damn.

Sa

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने सुनाया था कि चाय दादी के लिए कहेंगी ऐसे कि पेशेंट से पूछेंगे कहेंगे कुछ नहीं है, तो ये पेशेंट नहीं है, पेशेंट स्वरूप दिखा रही। बीमारी भी है लेकिन न्यारी और प्यारी बन बड़ी चल रही है वो अपने मस्ती में। ये प्यूरिफाई शरीर से अपना लास्ट अष्ट देवता प्रसिद्ध होना और भक्ति में है इष्ट देव बनना। तीनों ही संस्कार चला। दादी आप

0: 喂，
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो आज क्या करेंगे? शिवा का खाता बनाओ, तो जो कहते हो सहज योगी वो अनुभव करेंगे। कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्रह्मांड जीवन है मसे की, संगम युग है मसे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं। बोझ

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे ब्रह्मा

Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से न दुख देना न दुख लेना, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। अगर आप दिल से ऐसे समय अगर अधिकार रूप में मेरा बाबा का, तो बाप हाजिर हाजिर हो जाए। क्यों? बाप किस लिए? बच्चों के लिए ही तो है। और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग नहीं दे, ये हो ही नहीं सकता, असंभव।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा अभी सभी बच्चों से कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है ये बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने के स्थिति द्वारा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप की मदद तो है लेकिन समय पर ले।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहां है खुशियों का संगम।

bene. Ti ho sedato. Adesso.

achieved me. Achieve mastery.

次第，三万根本，一三。

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Okay।

टेस्ट भी आते हैं, समाचार तो अच्छा है, संसार समाचार जैसे अच्छे लगते हैं, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है।

समाधि। समाचार सच्चा भी होता है।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Suck.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था, शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वो तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो शरीर विशेष

0: Krishna sarva ka pyara. Hare ke mera apnapan.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस, सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये करें वो करें, ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं ऐसा नहीं, जो पाप ने किया कॉपी करना है बस, कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाली है ना, फोटो कॉपी है ना यहाँ, तो ये जो चित्र रखते हैं ब्रह्मा बाप का, भले रखो अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: गुप्त नंबर आगे होते हैं पता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बेटी करवा ले, अब ऐसी तैयारी कराओ करो जो सभी जैसे बाप दादा ने कहा बेफिक्र बात फिक्र नहीं तो बीमारी भी नहीं। खुश रहे सभी, खुशी नहीं कम है, ऐसी दवाई निकाल लो जो कभी भी कोई थोड़ा सा तन से या मन से ना खुश हो तो

0: सभी के मन में मेरा बाबा बिठा दो तो ये दवाई हो जाए। अच्छा बैठ जाओ, बहुत अच्छा सेवा कर रही है, करते चलो। विजय तो आपके साथ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

ऐसे तो नहीं, कभी आप मन के मालिक होते हैं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

ശ്രേഷ്ഠപ്രാലവത് ചമകകത ദുസ്രേ Or something.

Swarat. Seva Dwara. Punya Kakata. Yeah.

Personne.

Sarva Kasanoko Chamakarniki Chabier.

свадьба. Чек карте дам. Арча.

Se han visto

Fethiel. Drittetta. Drittetta. Kissi. Hey.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वापस क्यों देते? violento. Y el patata que te va a pasar.
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

संतुष्ट रहने वाली। संतुष्ट बाणियों को

假如Chamaco.

संतुष्ट आत्मा। मैं संतुष्टता का नेचर

संतोष की शक्ति सुते और सेज चारों ओर वायुमंडल फैलाती son.

そっとした。キーステティ、バレステティケオバル、サダビデイ、バレステティ。

కెత్తుని పిలుస్తుంది. Yeah.

Ist das

संतुष्ट आत्मा साखियों हर रिश्ते

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सिर्फ एक बात याद रखना, ऐसे नहीं हो कि सेवा और स्वोन्नति में बैलेंस में अंतर नहीं है। प्लान प्रैक्टिकल में करने के बाद ना तो सर्विस में बिजी हो गए ना, इसीलिए स्वोन्नति में अंतर आ गया, ये नहीं कहना। दोनों का बैलेंस सदा रहना। क्यों? दूसरों की सेवा करो और स्व की सेवा नहीं, ये अच्छा नहीं। दोनों का बैलेंस रखना ही सफलता है। समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर, दूसरा करे न करे, करेंगे तो सब
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चों

delicious.

who's dead.

흘러가는지 꾸준히

0: to aký sú to importanti.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्यों कि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाएं हैं। देखो कोई रंग बिरंग की तो है ना, ये तो एक कलयुग की लास्ट का ये फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाती, अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति पर रहे उस स्मृति में कहेंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएंगे, खुशी दिलाएंगे तो बस दो तीन दिन में दवाई से ठीक हो जाए। कभी भी दवाई या आजकल के तो बहुत नए फैशन है, कलयुग में सबसे ज्यादा है इन्वेंशन आजकल दवाया या अलग अलग थेरेपी कहते हैं, आज फलानी थेरेपी है आज फलानी, तो ये कलयुग का

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अब